0: खरेदर भी आ गया बौलट।
1: कौन?
0: पता नहीं, दारू पी के गाड़ी चला रहा था, मरते मरते बची हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।

0: क्यों फले निठे ताया
1: क्यों ये बापाजी टा समरो सही सम
0: तीनी मचुरी तीनी बा मिठी नहीं
2: प्रश्न में तेर पाथरी रो सारे छांबे दिन चोरा डाला बा
3: क्यों लाइम ले बिसे ना फ़ज़िंग अफ़ीम ले मज़िन नगर क्यों बैक्सली आखा